बेकसोकासहारावुलुत्फे अमीम, सबकी आंखों का तारा वो जाते करीम, सब

अब जीऊं मैं इसी में हो इंतकाल मेरा, तेरी मोहब्बत में अब जीऊं मैं उसी में हो इंतकाल मेरा, तेरी मोहब्बत में अब जीऊं मैं इसी में हो इंतकाल।

वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता, वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता। बस अरब जिंदगी अपनी दियारे कुद्स में होती, वहीं जीता वहीं मरता वहीं गोरो कफन होता। वी कंक्लूड टुनाइट विद वन मोर कपलेट एंड इंशाल्लाह सम अदर टाइम। मेरी जिंदगी का हासिल मेरी जी

कर नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर। अल्बो जाकू तो उस दर पे अब्बाद कर और सुकून दिलो जाकू खल्लाद कर। अल्बो जाकू तो उस दर

से उठ कर के फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर। अपनी खुशियों को अख्तर तू बर्बाद कर, अपनी खुशियों को अख्तर तू बर्बाद कर, अपने रब की खुशी से दिल आबाद कर। अपनी खुशियों को अख्तर तू बर्बाद कर, अपने रब की खुशी से दिल आबाद कर। अपने मालिक से उठ करके फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर। रूह को नूरे तकवा से तू शाद कर, नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ऑन ओकेजन वाज वॉकिंग गोइंग समवेयर, सो सम यंग चिल्ड्रन दे स्टार्टेड हैरेसिंग हिम एंड वन टुक अ स्टोन एंड थ्रू ऑन हिज चिन एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग. Then the children ran away. Allah Ta'ala puts them through many tests, but sometimes it is intended to show the people some greatness of theirs. That is why they are put through certain tests. Here Allah Ta'ala wanted to show something of Hazrat Shibli Rahmatullah Alayhi, that great wali of Allah Ta'ala, which they would not have known if this incident did not take

गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं। तेरे गुलिस्तान में सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब

कोशिश तेरी कशिश हो मेरी तलब हो। ओ अल्लाह हेल्प फ्रॉम योर साइड, एफर्ट फ्रॉम माय साइड, पुल फ्रॉम योर साइड, डिजायर फ्रॉम माय साइड। ओ अल्लाह हेल्प फ्रॉम योर साइड, एफर्ट फ्रॉम माय साइड, पुल टुवर्ड्स यू फ्रॉम योर साइड, a desire in my heart from my side. Teri madad ho meri ho koshish, teri kashish ho meri talab ho.

those fans on at the back there too, something. रहे तलब में सवार सब है पयाद मिसले गुबार में हूँ